ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापानी हुकूमत ने कुमामोतो में गुज़श्ता हफ्ते के ताकतवर जलजले से मुतासर कम्युनिटीज़ की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने हंगामी फंड से 24 बिलियन येन से ज़्यादा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मंगल के काबीना इजलास में रिजर्व फंड से तकरीबन $153 मिलियन मालियत की रकम खर्च करने की मंजूरी दी गई। आफतजदा इलाकों को फौरी तौर पर साजो सामान की फराहमी के लिए हुकूमत तकरीबन $15.2 मिलियन या कुल रकम का 10वां हिस्सा इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। इन अशिया में पीने का पानी, खुराक और पोर्टेबल एयर कूलर शामिल होंगे और मकामी हुकूमतों की जानिब से मखसूस दरख्वास्तों का इंतजार किए बगैर उन्हें खरीदा और अरसाल किया जाएगा। तकरीबन $7.6 मिलियन मकामी हुकूमतों को इनखला के लिए आर्जी रहायश गाहों की तैयारी में मदद के लिए दिए जाएंगे, जबकि बाकी मानदा लगभग $130 मिलियन मुतासर सड़कों की बहाली के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। क्यूशू एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से जलजले के बाद से बंद हैं। जापान के मौसमियाती हुक्काम ने खबरदार किया है कि जलजले से मुतासर कुमामोतो प्रीफेक्चर में लगभग अगले एक हफ्ते के दौरान मजीद शदीद जलजले आने का इम्कान है। ओकी सिटी और हिकावा टाउन में 28 जुलाई को आने वाले जलजले के इर्ताश की शिद्दत जापान के 0 से 7 के जलजला पैमा पर सबसे ज्यादा 7 रिकॉर्ड की गई थी, जिससे मुख्तलिफ मकामात पर शदीद नुकसानात हुए। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने मंगल को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि झटकों की तादाद बतदरीज कम हो रही है, लेकिन जमीनी इर्ताश बदस्तूर ज्यादा है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा बालाई 5 या उससे ज्यादा की शिद्दत के झटकों का इम्कान पिछले हफ्ते के बड़े जलजले से पहले के मुकाबले 80 गुना ज्यादा है। एजेंसी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मजीद एक हफ्ते तक इस शिद्दत के झटकों के लिए चौकन्ना रहें। कुमामोतो प्रीफेक्चर में बुध को कोसा कस्बे में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.6°C, तवाना शहर में 38.3° और कुमामोतो शहर में 38.1°C रिकॉर्ड किया गया। एजेंसी लोगों से अपील कर रही है कि वो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इकदाम करें। हुकाम का कहना है कि बहाली की कोशिशों में मसरूफ लोग वक्फे लें और गर्मी के लिए तैयार रहें। टोक्यो के शुमाल में वाके गुम्मा प्रीफेक्चर के नुमाता शहर में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें पोर्टेबल श्राइन की शक्ल एक

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 5 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पिछले सप्ताह अमरीका और जापान द्वारा मुद्रा बाजार में किए गए संयुक्त हस्तक्षेप के बारे में मंगलवार को एनएचके से बात की। उन्होंने इसे द्विपक्षीय गठबंधन का प्रतीक बताया। इस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जापानी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 5 येन से अधिक मजबूत हो गई थी। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका अपने महत्वपूर्ण जापानी सहयोगियों के साथ मिलकर यह दिखाना चाहता था कि ताकाइची सरकार की नीतियां सही है, ये नीतियां दीर्घकालिक रूप से येन को मजबूत करेंगी। उन्होंने कहा कि येन की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव और उसके मूल्य को कम आंकने से एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कमजोर येन जापान में बढ़ती मुद्रास्फीति का एक कारण है। बेसेंट ने कहा कि ऊर्जा की कीमतें कम होंगी और येन की अत्यधिक कमजोरी खत्म होने से मुद्रास्फीति भी कम होगी तथा जापान और येन एक सकारात्मक चक्र में प्रवेश कर पाएंगे। जापान सरकार ने स्थायी निवास वीजा संबंधी अपने दिशा निर्देशों में संशोधन का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत आवेदकों को जापानी परिवारों की औसत आय से अधिक आय बरकरार रखनी होगी। दिशा निर्देशों में जांच संबंधी ठोस शर्तें शामिल हैं। संशोधन मसौदे का उद्देश्य विदेशी नागरिकों को स्थायी निवास परमिट प्रदान करने के संबंध में उचित निर्णय लेना है। नियोजित शर्तों में एक यह भी है कि क्या आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय जापानी परिवारों की औसत आय से लगातार अधिक रही है। उनके अनुमानित पेंशन लाभों पर भी गौर किया जाएगा। आवेदकों को जापानी भाषा में दक्षता और जापानी व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी भी दर्शानी होगी। सरकार संशोधन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें जनता से सुझाव आमंत्रित करना भी शामिल है। सरकार इस वर्ष अप्रैल से प्राप्त आवेदनों पर आय की शर्त लागू करना चाहती है, जबकि बाकी शर्तें अप्रैल 2027 से

प्रभावी होंगी। जापान के 2026 के रक्षा श्वेत पत्र में एआई और ड्रोन से जुड़े युद्ध के नए तरीकों का जवाब देने में सक्षम होने के लिए रक्षा उपकरणों के उत्पादन और प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत की गई। इस वर्ष के श्वेत पत्र में नवीनतम सैन्य प्रौद्योगिकियों पर एक नया खंड जोड़ा गया है जिसमें सस्ते ड्रोन भी शामिल हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन और अन्य जगहों पर संघर्षों में इनका उपयोग काफी बढ़ रहा है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि कई देश लंबे समय तक लड़ने की क्षमता हासिल करने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं और वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से एआई, सेमीकंडक्टर और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान रक्षा उद्योग में प्रवेश करने के लिए अधिक स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि जापान रणनीतिक रूप से रक्षा उपकरणों के विदेशी हस्तांतरण को बढ़ावा देगा क्योंकि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से घातक हथियारों के निर्यात की अनुमति देने वाले प्रतिबंधों में ढील दी है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान सरकार ने कुमामोतो में पिछले सप्ताह आए शक्तिशाली भूकंप से तबाह हुए समुदायों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आपात कोष से 24 अरब येन से अधिक की राशि के उपयोग को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को आपात कोष से लगभग 15 करोड़ 30 लाख डॉलर की राशि खर्च करने को मंजूरी दी गई। सरकार ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित आपूर्ति पहुंचाने के लिए लगभग 1 करोड़ 52 लाख डॉलर यानी कुल राशि का 10वां हिस्सा खर्च करने की योजना बनाई है। राहत सामग्री में पीने का पानी, भोजन और पोर्टेबल एयर कूलर शामिल होंगे और इन्हें स्थानीय सरकारों से विशेष अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना ही खरीद कर वितरित किया जाएगा। लगभग 76 लाख डॉलर की राशि स्थानीय सरकारों को विस्थापितों के लिए अस्थायी आवास तैयार करने में सहायता देने हेतु उपयोग की जाएगी, जबकि शेष लगभग 13 करोड़ डॉलर की राशि टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए उपयोग की जाएगी। भूकंप के बाद से क्यूशु एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से बंद हैं। जापान के मौसम अधिकारियों ने आगाह किया है कि भूकंप प्रभावित कुमामोतो प्रीफेक्चर में अगले एक सप्ताह तक भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए जा सकते हैं। 28 जुलाई को आए भूकंप की तीव्रता उकी शहर और हिकावा नगर में जापानी पैमाने पर सर्वोच्च 7 दर्ज की गई, जिससे कई जगहों पर भारी क्षति हुई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भूकंपों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन भूकंपीय गतिविधि अब भी उच्च बनी हुई है। एजेंसी ने बताया कि लगभग 5 उच्च या इससे अधिक की तीव्रता के भूकंप आने की संभावना पिछले सप्ताह आए भीषण भूकंप से पहले की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक है। एजेंसी ने लोगों से करीब एक सप्ताह और इतनी तीव्रता के भूकंपों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया। कुमामोतो प्रीफेक्चर में बुधवार को तापमान में वृद्धि देखी गई। दिन का अधिकतम तापमान कोसा नगर में 38.6 डिग्री, तमाना शहर में 38.3 डिग्री और कुमामोतो शहर में 38.1 डिग्री सेल्सियस रहा। एजेंसी ने लोगों से तापघात से बचाव के उपाय अपनाने का आग्रह किया है। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्यों में लगे लोगों को बीच बीच में आराम करना चाहिए और भीषण गर्मी के लिए तैयार रहना चाहिए। टोक्यो के उत्तर में गुम्मा प्रीफेक्चर के नुमाता शहर में आयोजित उत्सव में एक पौराणिक प्राणी के आकार की झांकी का जुलूस निकाला गया। 3 दिवसीय वार्षिक नुमाता उत्सव के पहले दिन सोमवार शाम को लगभग 150 महिलाओं ने झांकी को कंधे पर उठाया। लंबी नाक वाले पौराणिक जीव तेंगू के विशाल मुखौटे के आकार की झांकी को सिर्फ महिलाएं ही उठाती हैं। मुखौटे की नाक ही 3 मीटर ऊंची है। महिलाओं ने शहर के केंद्र से जुलूस निकालते हुए पारंपरिक संगीत की धुन पर गीत गाए। माना जाता है कि इसे उठाने वाले लोगों को अच्छे स्वास्थ्य, शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन और सौभाग्य सहित विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। नुमाता शहर के महापौर होशिनो मिनोरू ने आशा व्यक्त की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस उत्सव का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वे इसे एक शानदार आयोजन बनाना चाहते हैं जिसमें कोई दुर्घटना न हो।
2: अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पिछले सप्ताह अमरीका और जापान द्वारा मुद्रा बाजार में किए गए संयुक्त हस्तक्षेप को द्विपक्षीय गठबंधन का प्रतीक बताया। इस हस्तक्षेप से जापानी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 5 येन से अधिक मजबूत हो गई थी। जापान सरकार की स्थायी निवास वीजा संबंधी अपने दिशा निर्देशों में संशोधन का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत आवेदकों को जापानी परिवारों की औसत आय से अधिक आय बरकरार रखनी होगी। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।